0: सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान, थप जानकारी को लागि
0: खेल सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार, फोन नम्बर 98146।